0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा ने कलिसिया के धर्म सिद्धांत लुमेन जेंसियम के अंतिम अध्याय को कुमारी मरियम के नाम समर्पित किया है। उन्हें कलिसिया का एक प्रमुख और अद्वितीय सदस्य के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे विश्वास और करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शब्द हमें इस बात को समझने हेतु निमंत्रण देते हैं कि कैसे मरियम पवित्र आत्मा के कार्य अनुरूप ईश्वर के पुत्र का स्वागत करती और उन्हें जन्म देती हैं जिन्होंने देह धारण किया। हम उन्हें सारी कलिसिया की एक प्रमुख सदस्य और माता, दो आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अपने को अंगीकृत होने देना जो उनमें पूरा होता है, और विश्वास और अपने कुंवारे प्रेम में पवित्र आत्मा के उपहार का स्वागत करने के द्वारा मरियम अपने में पूरी कलिसिया के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, जो कलिसिया के लिए एक निमंत्रण है, जिसके फलस्वरूप वह ईश्वरीय वाणी में एक श्रेष्ठ प्राणी स्वरूप पवित्र आत्मा के सुकोमल कार्य के माध्यम ईश्वर के संतानों के लिए एक माता होने को बुलाई जाती है। उससे भी बढ़कर वह अपने में एक विश्वासी है, जिसमें हम सबों ने ईश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में अपने लिए दिव्य रहस्य हेतु एक शर्तहीन खुलेपन को पाया है। मरियम ख्रिस्तीय समुदाय की एक उत्कृष्ट सदस्य है। अंततः अपने संतानों को अपने बेटे के निकट लाने में जो हमारे बीच आए, मरियम पूरी कलिसिया की माता बनती हैं। हम उनकी ओर संतानों के रूप में विश्वास से आते हैं, इस बात की निश्चितता में कि हम सोने जाएंगे, हमें सुरक्षा और प्रेम प्राप्त होगा। संत पापा लियो ने कहा,
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
1: हम कुमारी मरियम के इन गुणों को देखते हुए यह घोषित कर सकते हैं कि एक नारी के रूप में वह रहस्य की निशानी है। शब्द नारी हमारे लिए इसराइल की एक ऐतिहासिक सच्चाई युवा नारी के बारे में घोषित करता है, जिन्हें मुक्तिदाता की माता बनने का एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। निशानी हमारे लिए इस तथ्य पर जोर देती है कि उनमें हम दो गतिशीलता, उतरने और चढ़ने के भाव को पाते हैं। उनमें हम ईश्वर के शर्तहीन चुने जाने और विश्वास में उनके स्वतंत्र समर्पण को पाते हैं, जो ख्रिस्त की ज्योति को दुनिया में लेकर आती है। मरियम इस भांति हमारे लिए वह नारी हैं जो रहस्य की निशानी हैं, अर्थात मुक्ति योजना की दिव्य निशानी जो एक समय छुपी रही और अब यीशु ख्रीस्त की पूर्णता में अपने को प्रकट करती है। संत पापा ने कहा कि धर्म सभा हमारे लिए इस बात को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि मुक्ति इतिहास में कुमारी मरियम का एक अद्वितीय स्थान सुरक्षित है। यह उन्हें यीशु से हमारे लिए मुक्ति की एकमात्र मध्यस्थता घोषित करती है और यह कि परम पवित्र माता किसी भी तरह से बाधा नहीं डालती बल्कि मसीह के साथ विश्वासियों के तत्काल मिलन को बढ़ावा देती है। वहीं ईश्वरीय विधान की उस नीति से पहले ईश्वरीय दिव्यता में जहां हम कुंवारी को शब्द के देह धारण माता स्वरूप देखते हैं, धन्य कुमारी मरियम इस अनोखे रूप में अपनी आज्ञाकारिता, विश्वास, आशा और अनंत प्रेम में उद्धारकर्ता के संग सहयोग करते हुए आत्माओं को पुनः अलौकिक जीवन प्रदान करती है। इसलिए वह कृपा के क्रम में हमारी माता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
1: कलिसिया के रहस्य को भी हम कुमारी मरियम में परिलक्षित होता पाते हैं। उनमें ईश प्रजा अपने उत्पत्ति आदर्श और अपने निवास को पाती है। ईश्वर की माता में कलिसिया स्वयं अपने रहस्य पर चिंतन करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वह उनमें अपने शुद्ध विश्वास, मातृत्व में करुणा और दंपत्य विधान को पाती है, बल्कि उससे भी बढ़कर वह अपने स्वयं के आदर्श को पहचानती है जिसके लिए वह बुलाई गई है। संत पापा ने कहा कि हम देख सकते हैं कि लुमेन जेंसियम में संकलित बातों के अनुरूप कुमारी मरियम पर चिंतन करना हमें कलिसिया को प्रेम और उनमें ईश्वर के राज्य की पूर्णता हेतु कार्य करने का निमंत्रण मिलता है जो आने वाले हैं और जिसकी परिपूर्णता महिमा में होगी। संत पापा लियो ने कहा कि अतः आइए हम अपने को उस अद्वितीय आदर्श में मिले सवाल के बारे में पूछें जो हमें मरियम कुमारी और माता से प्राप्त हुआ है। हम उनसे सहायता की कामना करें, हम उनसे विचवई करें जिससे वे हमें पूछे गए सवाल का जवाब देने में मदद करें। क्या मैं कलिसिया में अपनी भागीदारी को विनम्र और सक्रिय विश्वास के साथ जीता हूँ? क्या मैं उनमें उस समुदाय के विधान को पहचानता हूँ जिसे ईश्वर मुझे अनंत प्रेम में उत्तर देने की मांग करते हैं? ईश्वर प्रदत्त चरवाहों के प्रति आज्ञाकारिता में क्या मैं कलिसियाई जीवन के अंग होने का अनुभव करता हूँ? क्या मैं मरियम को एक आदर्श के रूप में देखता हूँ, एक उत्कृष्ट सदस्य और कलिसिया की माता के रूप में तथा उनके बेटे के एक विश्वासी शिष्य होने के लिए मदद मांगता हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा जो मरियम पर उतरे, जिन्हें हम नम्रता और पूर्ण विश्वास में पुकारते हैं, हमें इन आश्चर्यजनक सच्चाइयों को पूरा करने की कृपा प्रदान करें और कलिसिया के धर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण चिंतन करने के उपरांत हम कुमारी मरियम से निवेदन करें कि वे हमें यह कृपा प्रदान करें कि हम सभों में माता कलिसिया के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 13 मई को आम दर्शन समारोह शुरू होने से पहले संत पापा लियो 14वें पापा मोबाइल में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के बीच से गुजर रहे थे और वे उसी जगह पर पापा मोबाइल से नीचे उतरे, घुटने टेक कर उस विशेष स्थान को स्पर्श किया जहां ठीक इसी दिन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था। समारोह के दौरान संत पापा ने इंग्लिश बोलने वालों का अभिवादन करते हुए कहा, आज हम फतिमा की माता मरियम का पर्व दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था और इन्हीं वजहों से मैंने आज अपनी धर्म शिक्षा धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित किया है। इस जगह पर एक सफेद संगमरमर का प्लेट लगा है जिस पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का कोट ऑफ आर्म्स जड़ा हुआ है और इसे पत्थरों के बीच रखा गया है। हत्या की कोशिश के बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बार बार यह यकीन दिलाया कि कुंवारी मरिया की दुआ से उनकी जान बच गई थी। इस बारे में पुर्तगाली तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने सभी को फतिमा की माता मरियम के तीर्थालय की ओर देखने के लिए कहा, जहां उन्होंने 3 चरवाहे बच्चों को शांति का संदेश दिया था। वह जगह जो ख्रिस्तियों को बहुत प्यारी है, आज सभी 5 महाद्वीपों के कई तीर्थयात्री एकत्रित हुए हैं। उनकी मौजूदगी हमारे समय के लोगों के बीच सांत्वना, एकता और उम्मीद की जरूरत का संकेत है। आइए हम दुनिया के हर हिस्से से, खासकर युद्ध से परेशान लोगों से उठ रही शांति और मेलजोल की पुकार को कुंवारी मरिया के निष्कलंक हृदय को सौंप दें। 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय 13 मई को एक खुली सफेद जीप में आम दर्शन समारोह से पहले भक्तों का अभिवादन कर रहे थे, तभी उन पर पास से गोलियां चलाई गईं। संत पापा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत रोम के जमेली अस्पताल ले जाया गया। वाटिकन प्रेस ऑफिस से जारी एक बयान में बाद में पुष्टिकृत किया गया था कि संत पापा के पेट में गोली लगी थी और जमेली अस्पताल में उनका सर्जरी हो रहा था। बयान में यह भी कहा गया, हालांकि उनकी हालत गंभीर थी, फिर भी ठीक होने की पक्की उम्मीदें थी। 4 दिन बाद अस्पताल से स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भक्तों को संबोधित किया और हमले के लिए जिम्मेदार मेहमत अली आगा को सबके सामने माफ करने की बात कही। उन्होंने हमलावर के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया और खुद को एक बार फिर कुंवारी मरिया के सिपुर्द किया। इसके बाद के सालों में 13 मई 1981 की घटनाएं संत पापा की फतिमा की माता मरियम के प्रति भक्ति से जुड़ गई। 8 अप्रैल 2005 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने दिवंगत संत पापा की दुख और विश्वास की गवाही पर चिंतन किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की आखिरी किताब याद और पहचान के कुछ पाठों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्यार से बदले गए दुख और ख्रीस्त के रहस्य से जुड़ने की बात कही। फिर संत पापा फ्रांसिस ने 12 मई 2021 को सालगिरह से एक दिन पहले आम दर्शन समारोह के दौरान हमले को याद किया। हमले की तारीख और फतिमा की माता मरियम के पर्व दिवस के बीच संबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत को याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। और 14 मई को संत पापा लियो 14वें रोम के सपियंसा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय में माहौल बहुत उत्साह से भरा है। कल करीब 10:15 बजे संत पापा लियो 14वें सपियंसा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय के चैपल में संत पापा लियो 14वें कुछ देर प्रार्थना करेंगे, समुदाय का अभिवादन करेंगे और फिर बड़े हॉल में छात्रों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। विश्वविद्यालय के चैपलिन फादर गैब्रियल वैकियो ने कहते हैं, यह इंसानी दिलों का प्रयोगशाला है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के 1,25,000 छात्र हैं जो आने वाले कल को बनाएंगे। यहाँ हमारा मकसद 21वीं सदी के लायक एक समझदारी भरे नजरिए से विश्वास को जीना है।
उधर अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म करने की राजनीतिक कोशिशें एक अहम मोड़ पर हो सकती हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई का अंत बहुत करीब है। क्रेमलिन बुनियादी कदमों की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में युद्ध का अंत बहुत करीब है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी संभावित शांति समझौते में पूरा डोनबास इलाका रूस को ट्रांसफर किया जाएगा। इन बातों की कुछ हद तक पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से ज्यादा सावधान रुख से होती है, जिन्होंने कहा कि झगड़े को सुलझाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी खास तारीखों और मकसद पर बात करना जल्दबाजी होगी और अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कीव ने किसी कामयाबी की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन की सप्लाई के लिए 20 देशों के साथ एक समझौते पर काम करने की रिपोर्ट दी है, जबकि वे एक पुराने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक से जुड़े एक और भ्रष्टाचार स्कैंडल से जूझ रहे हैं। यूरोप अपनी तरफ से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखे हुए है। यूरोपीय संघ की फॉरेन पॉलिसी के शीर्ष प्रतिनिधि काजा कैलास ने घोषणा की कि कीव को जून में 90 बिलियन डॉलर के लोन की पहली किश्त मिलेगी। इस बीच जमीन पर पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से 8 मौतें हुई और 11 घायल हुए। रात भर यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के लॉन्च किए गए 139 ड्रोन में से 111 को बेअसर कर दिया। रूसी सेना ने कल रात 286 यूक्रेनी ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की भी रिपोर्ट दी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार के आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवार के आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा ने कलिस्सा के धर्म सिद्धांत लुमेन जेंसियम के अंतिम अध्याय को कुमारी मरियम के नाम समर्पित किया है। उन्हें कलिस्सा का एक प्रमुख और अद्वितीय सदस्य के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे विश्वास और करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शब्द हमें इस बात को समझने हेतु निमंत्रण देते हैं कि कैसे मरियम पवित्र आत्मा के कार्य अनुरूप ईश्वर के पुत्र का स्वागत करती और उन्हें जन्म देती हैं जिन्होंने देह धारण किया। हम उन्हें सारी कलिसिया की एक प्रमुख सदस्य और माता दो आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अपने को अंगीकृत होने देना जो उनमें पूरा होता है और विश्वास और अपने कुंवारे प्रेम में पवित्र आत्मा के उपहार का स्वागत करने के द्वारा मरियम अपने में पूरी कलिसिया के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, जो कलिसिया के लिए एक निमंत्रण है जिसके फलस्वरूप वह ईश्वरीय वाणी में एक श्रेष्ठ प्राणी स्वरूप पवित्र आत्मा के सुकोमल कार्य के माध्यम ईश्वर के संतानों के लिए एक माता होने को बुलाई जाती है। उससे भी बढ़कर वह अपने में एक विश्वासी है जिसमें हम सबों ने ईश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में अपने लिए दिव्य रहस्य हेतु एक शर्तहीन खुलेपन को पाया है। मरियम ख्रिस्तीय समुदाय की एक उत्कृष्ट सदस्य है। अंततः अपने संतानों को अपने बेटे के निकट लाने में जो हमारे बीच आए, मरियम पूरी कलिसिया की माता बनती हैं। हम उनकी ओर संतानों के रूप में विश्वास से आते हैं, इस बात की निश्चितता में कि हम सोने जाएंगे, हमें सुरक्षा और प्रेम प्राप्त होगा। संत पापा लियो ने कहा,
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
1: हम कुमारी मरियम के इन गुणों को देखते हुए यह घोषित कर सकते हैं कि एक नारी के रूप में वह रहस्य की निशानी है। शब्द नारी हमारे लिए इसराइल की एक ऐतिहासिक सच्चाई युवा नारी के बारे में घोषित करता है जिन्हें मुक्तिदाता की माता बनने का एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। निशानी हमारे लिए इस तथ्य पर जोर देती है कि उनमें हम दो गतिशीलता, उतरने और चढ़ने के भाव को पाते हैं। उनमें हम ईश्वर के शर्तहीन चुने जाने और विश्वास में उनके स्वतंत्र समर्पण को पाते हैं जो ख्रिस्त की ज्योति को दुनिया में लेकर आती है। मरियम इस भांति हमारे लिए वह नारी हैं जो रहस्य की निशानी है, अर्थात मुक्ति योजना की दिव्य निशानी, जो एक समय छुपी रही और अब यीशु ख्रीस्त की पूर्णता में अपने को प्रकट करती है। संत पापा ने कहा कि धर्म सभा हमारे लिए इस बात को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि मुक्ति इतिहास में कुमारी मरियम का एक अद्वितीय स्थान सुरक्षित है। यह उन्हें यीशु से हमारे लिए मुक्ति की एकमात्र मध्यस्थता घोषित करती है और यह कि परम पवित्र माता किसी भी तरह से बाधा नहीं डालती, बल्कि मसीह के साथ विश्वासियों के तत्काल मिलन को बढ़ावा देती है। वहीं ईश्वरीय विधान की उस नीति से पहले ईश्वरीय दिव्यता में, जहां हम कुंवारी को शब्द के देह धारण माता स्वरूप देखते हैं। धन्य कुमारी मरियम इस अनोखे रूप में अपनी आज्ञाकारिता, विश्वास, आशा और अनंत प्रेम में उद्धारकर्ता के संग सहयोग करते हुए आत्माओं को पुनः अलौकिक जीवन प्रदान करती है। इसलिए वह कृपा के क्रम में हमारी माता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
1: कलिसे के रहस्य को भी हम कुमारी मरियम में परिलक्षित होता पाते हैं। उनमें ईश प्रजा अपने उत्पत्ति आदर्श और अपने निवास को पाती है। ईश्वर की माता में कलिसिया स्वयं अपने रहस्य पर चिंतन करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वह उनमें अपने शुद्ध विश्वास, मातृत्व में करुणा और दंपत्य विधान को पाती है, बल्कि उससे भी बढ़कर वह अपने स्वयं के आदर्श को पहचानती है जिसके लिए वह बुलाई गई है। संत पापा ने कहा कि हम देख सकते हैं कि लुमेन जेंसुम में संकलित बातों के अनुरूप कुमारी मरियम पर चिंतन करना हमें कलिसिया को प्रेम और उनमें ईश्वर के राज्य की पूर्णता हेतु कार्य करने का निमंत्रण मिलता है जो आने वाले हैं और जिसकी परिपूर्णता महिमा में होगी। संत पापा लियो ने कहा कि अतः आइए हम अपने को उस अद्वितीय आदर्श में मिले सवाल के बारे में पूछें जो हमें मरियम कुमारी और माता से प्राप्त हुआ है। हम उनसे सहायता की कामना करें, हम उनसे विचवई करें जिससे वे हमें पूछे गए सवाल का जवाब देने में मदद करें। क्या मैं कलिसिया में अपनी भागीदारी को विनम्र और सक्रिय विश्वास के साथ जीता हूँ? क्या मैं उनमें उस समुदाय के विधान को पहचानता हूँ जिसे ईश्वर मुझे अनंत प्रेम में उत्तर देने की मांग करते हैं? ईश्वर प्रदत्त चरवाहों के प्रति आज्ञाकारिता में क्या मैं कलिसियाई जीवन के अंग होने का अनुभव करता हूँ? क्या मैं मरियम को एक आदर्श के रूप में देखता हूँ, एक उत्कृष्ट सदस्य और कलिसिया की माता के रूप में, तथा उनके बेटे के एक विश्वासी शिष्य होने के लिए मदद मांगता हूँ? प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा जो मरियम पर उतरे, जिन्हें हम नम्रता और पूर्ण विश्वास में पुकारते हैं, हमें इन आश्चर्यजनक सच्चाइयों को पूरा करने की कृपा प्रदान करें और कलिसिया के धर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण चिंतन करने के उपरांत हम कुमारी मरियम से निवेदन करें कि वे हमें यह कृपा प्रदान करें कि हम सभोंग में माता कलिसिया के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 13 मई को आम दर्शन समारोह शुरू होने से पहले संत पापा लियो 14वें पापा मोबाइल में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के बीच से गुजर रहे थे और वे उसी जगह पर पापा मोबाइल से नीचे उतरे, घुटने टेक कर उस विशेष स्थान को स्पर्श किया जहां ठीक इसी दिन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था। समारोह के दौरान संत पापा ने इंग्लिश बोलने वालों का अभिवादन करते हुए कहा, आज हम फतिमा की माता मरियम का पर्व दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था और इन्हीं वजहों से मैंने आज अपनी धर्म शिक्षा धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित किया है। इस जगह पर एक सफेद संगमरमर का प्लेट लगा है जिस पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का कोट ऑफ आर्म्स जड़ा हुआ है और इसे पत्थरों के बीच रखा गया है। हत्या की कोशिश के बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बार बार यह यकीन दिलाया कि कुंवारी मरिया की दुआ से उनकी जान बच गई थी। इस बारे में पुर्तगाली तीर्थ यात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने सभी को फतिमा की माता मरियम के तीर्थालय की ओर देखने के लिए कहा, जहां उन्होंने 3 चरवाहे बच्चों को शांति का संदेश दिया था। वह जगह जो ख्रिस्तियों को बहुत प्यारी है, आज सभी 5 महाद्वीपों के कई तीर्थ यात्री एकत्रित हुए हैं। उनकी मौजूदगी हमारे समय के लोगों के बीच सांत्वना, एकता और उम्मीद की जरूरत का संकेत है। आइए हम दुनिया के हर हिस्से से, खासकर युद्ध से परेशान लोगों से उठ रही शांति और मेलजोल की पुकार को कुंवारी मरिया के निष्कलंक हृदय को सौंप दें। 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय 13 मई को एक खुली सफेद जीप में आम दर्शन समारोह से पहले भक्तों का अभिवादन कर रहे थे, तभी उन पर पास से गोलियां चलाई गईं। संत पापा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत रोम के जमेली अस्पताल ले जाया गया। वाटिकन प्रेस ऑफिस से जारी एक बयान में बाद में पुष्टिकृत किया गया था कि संत पापा के पेट में गोली लगी थी और जमेली अस्पताल में उनका सर्जरी हो रहा था। बयान में यह भी कहा गया, हालांकि उनकी हालत गंभीर थी, फिर भी ठीक होने की पक्की उम्मीदें थी। 4 दिन बाद अस्पताल से स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भक्तों को संबोधित किया और हमले के लिए जिम्मेदार मेहमत अली आगा को सबके सामने माफ करने की बात कही। उन्होंने हमलावर के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया और खुद को एक बार फिर कुंवारी मरिया के सिपुर्द किया। इसके बाद के सालों में 13 मई 1981 की घटनाएं संत पापा की फतिमा की माता मरियम के प्रति भक्ति से जुड़ गई। 8 अप्रैल 2005 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने दिवंगत संत पापा की दुख और विश्वास की गवाही पर चिंतन किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की आखिरी किताब याद और पहचान के कुछ पाठों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्यार से बदले गए दुख और ख्रिस्त के रहस्य से जुड़ने की बात कही। फिर संत पापा फ्रांसिस ने 12 मई 2021 को सालगिरह से एक दिन पहले आम दर्शन समारोह के दौरान हमले को याद किया। हमले की तारीख और फतिमा की माता मरियम के पर्व दिवस के बीच संबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत को याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। और 14 मई को संत पापा लियो 14वें रोम के सपियेंसा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय में माहौल बहुत उत्साह से भरा है। कल करीब 10:15 बजे संत पापा लियो 14वें सपियेंसा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय के चैपल में संत पापा लियो 14वें कुछ देर प्रार्थना करेंगे, समुदाय का अभिवादन करेंगे और फिर बड़े हॉल में छात्रों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। विश्वविद्यालय के चैपलिन फादर गैब्रियल वैकियो ने कहते हैं, यह इंसानी दिलों का प्रयोगशाला है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के 1,25,000 छात्र हैं जो आने वाले कल को बनाएंगे। यहाँ हमारा मकसद 21वीं सदी के लायक एक समझदारी भरे नजरिए से विश्वास को जीना है।
उधर अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म करने की राजनीतिक कोशिशें एक अहम मोड़ पर हो सकती हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई का अंत बहुत करीब है। क्रेमलिन बुनियादी कदमों की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में युद्ध का अंत बहुत करीब है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी संभावित शांति समझौते में पूरा डोनबास इलाका रूस को ट्रांसफर किया जाएगा। इन बातों की कुछ हद तक पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से ज्यादा सावधान रुख से होती है, जिन्होंने कहा कि झगड़े को सुलझाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी खास तारीखों और मकसद पर बात करना जल्दबाजी होगी और अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कीव ने किसी कामयाबी की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन की सप्लाई के लिए 20 देशों के साथ एक समझौते पर काम करने की रिपोर्ट दी है, जबकि वे एक पुराने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक से जुड़े एक और भ्रष्टाचार स्कैंडल से जूझ रहे हैं। यूरोप अपनी तरफ से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखे हुए है। यूरोपीय संघ की फॉरेन पॉलिसी के शीर्ष प्रतिनिधि काजा कैलास ने घोषणा की कि कीव को जून में 90 बिलियन डॉलर के लोन की पहली किश्त मिलेगी। इस बीच जमीन पर पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से 8 मौतें हुई और 11 घायल हुए। रात भर यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के लॉन्च किए गए 139 ड्रोन में से 111 को बेअसर कर दिया। रूसी सेना ने कल रात 286 यूक्रेनी ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की भी रिपोर्ट दी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: अवरुद्ध होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना।

0: दंत कागढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मपुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख

संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे कि मृत्यु एक सच है, वह जीवन की वास्तविकता है और उससे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। श्रोताओ, अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी एक हद होती है। अत्याचार सहते सहते व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। इसीलिए उपदेशक कहता है कि किसी भी मामले में केवल शुरुआत पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उसके अंत तक धैर्य रखा जाए, क्योंकि धैर्य अहंकार से अच्छा है। वह सब्र और सहन शक्ति की तारीफ करता है और क्रोध न करने का हमें परामर्श देता है, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। तदुपरांत 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में उपदेशक अतीत पर विचार और विलाप करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। कहता है, यह मत कहो कि पहले के दिन अच्छे थे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि हम केवल अतीत के बारे में रोते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह अपने भविष्य को नष्ट कर डालेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम अपने वर्तमान की परवाह करें ताकि भविष्य सुरक्षित रह पाए। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक धन के सदुपयोग का भी अनुरोध करता है। धन जीने के लिए आवश्यक है, किंतु धन के गुलाम न बना जाए। प्रज्ञा, विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिएं तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान किया करें।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओ, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। यहाँ उपदेशक के दृष्टिकोण से इस पद में भाग्य या नियति की भावना छिपी हुई है। मनुष्य भाग्याधीन है और जो कुछ होना है उसकी अनिवार्यता सुनिश्चित है। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप कहते हैं, शेर के सामने खड़े होना बुद्धिमानी नहीं है और न ही तूफान में पाल उठाने की सोचना। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णयों के आगे झुकना ही हितकर है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। फिर कहता है, सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। यहाँ उपदेशक सुलेमान का परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए इसी पर विचार करता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओ, सुख के दिन हम सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु हम जानते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते। कभी सुख तो कभी दुख, और दोनों में संतुलन बनाए रखकर जीना ही जीना है। जब जब सुख मिले, जब जब आनंद के पल आए, तो आप उसे अच्छी तरह जिए, भले कर्म करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि कब बुरे दिन आ जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, मैंने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, क्यों हानि करना चाहते हो। न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो। अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से न जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। उपदेशक कहता है कि उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ को देखा। जब कथित अच्छे दिन थे उसने संसार की हर खुशी में खुशी मनाई। उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा और आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। उपदेशक मन ही मन यह दलील करता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। धर्मी और धर्म परायण व्यक्ति अपनी नेकी में ही मर जाए, यह कहाँ का न्याय है। अस्तु कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। कहता है, जीवन में संतुलन बनाए रखना बुद्धिमानी है। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान ने अपने पुत्रों से यह कहना चाहा कि वे जिंदगी की बेकार बातों को दृष्टिगत रखते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखें। नेक बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं, समझदार बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चालाक बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेवकूफ बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं। श्रोताओ, यह सोच लेना कि सब कुछ सही मात्रा में होना अच्छा है संभवतः ठीक नहीं है, यह समझदारी नहीं है। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को, संत पॉल को और बहुत से अधिक संतों को उनके युग में संतुलित इंसान नहीं समझा जाता था। लोगों के प्रति
उनकी जिम्मेदारी की उनकी समझ ने उन्हें कई लोगों की नजर में असंतुलित बना दिया था। अस्तु, दुख और सुख, धर्म और संसार, नैतिकता और भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो 14वें ने गुरुवार 14 मई को रोम के सपियेंसा यूनिवर्सिटी की भेंट की। यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित करने के पूर्व संत पापा लियो ने यूनिवर्सिटी गिरजाघर की भेंट की और महाविद्यालय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। अपने संदेश में संत पापा लियो ने विद्यार्थियों को सच्ची शांति के शिल्पकार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब सत्य की चाहत एक खोज बन जाती है तो पढ़ाई में हमारी हिम्मत एक नई दुनिया के आशा की गवाही देती है। उन्होंने संत अगस्तीन को एक बेचैन नौजवान के रूप में याद दिलाया जिन्होंने गंभीर गलतियां की लेकिन सुंदरता और ज्ञान के लिए अपना जुनून कभी नहीं खोया। युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि आज की बेचैनी यह सवाल पूछती है, आप कौन हैं? यह सवाल हम चुपचाप ईश्वर से पूछते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हम खुद दे सकते हैं, फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी अकेले नहीं दे सकते। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के प्राध्यापकों से कहा, अपने विद्यार्थियों पर विश्वास करना सबसे जरूरी है, इसलिए आप स्वयं से पूछें, क्या मैं उन पर विश्वास या भरोसा करता हूँ। शिक्षा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह युवाओं के दिलों से बातें करना है और सिर्फ दिमागी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। संत पापलियो ने दाई किंडम कम अंतरधार्मिक वार्ता प्रार्थना कार्यक्रम को अपना वीडियो संदेश प्रेषित करते हुए अपनी आध्यात्मिक निकटता का सामीप्य प्रदान किया। अपने संदेश में संत पापा ने कहा, ख्रिस्त हमारे लिए सब कुछ है, उनमें हम जीवन की पूर्णता और उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। हम इस अनुभूति के बारे में चुपचाप नहीं रह सकते हैं, हमें इसे साहस में घोषित करने की जरूरत है क्योंकि यह सचमुच में सुसमाचार है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे संग है और हमारी मुलाकात उनसे हुई है और हम उसे दूसरों को बतलाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापा लियो ने संत पावलो बोलेवियन ख्रिस्तीय महाविद्यालय की 60वीं साल गिरह पर उन्हें अपना संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने अपने संदेश में कहा कि महाविद्यालय का अस्तित्व संपूर्ण मानवीय विकास को बढ़ावा देना है क्योंकि सच्चे शिक्षण का उद्देश्य मानव के अंतिम लक्ष्य और उसके अलग अलग दलों की भलाई को प्रोत्साहित करना है जिसका वह सदस्य है। इस संरचना के अंतर्गत मानसिक और नैतिक योग्यता, जिम्मेदारी पूर्ण स्वतंत्रता और जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देना है जिससे व्यक्ति में सोचने विचारने की योग्यता, खुली वार्ता के भाव और सही रूप में कार्य करने की योग्यता विकसित की जा सके। संस्थान के आदर्श वाक्य वेरितास इन कारिताते प्रेम में निष्ठा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति महाविद्यालय के प्रेरितिक कार्यों को संक्षेपित करती है जो विश्वास की आधारशिला में निहित है। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार सच्चाई अपने में सिर्फ एक बौद्धिक या अमूर्त विचार नहीं है बल्कि यह अपने को यीशु ख्रिस्त के संग स्थापित करना है जो अपने को विशेष रूप से सत्य स्वरूप प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण रूप में अपने को मानव के लिए व्यक्त करते और अपनी बुलाहट के बारे में स्पष्ट करते हैं। संत पापा ने कहा, सत्य की पहचान करना एक ऐसे व्यक्तिगत चेहरे और एक संबंध स्थापित करने वाला पहलू को व्यक्त करता है जो ज्ञान को हावी होने, अलगाव या सिर्फ उपयोग किए जाने से बचाता है। इसके बदले यह हमें न्याय और हर मानव खासकर सबसे कमजोर लोगों की सम्मानजनक सेवा हेतु अग्रसर करता है। वेरितास इन कारिताते एक शिक्षण संस्थान के बुलाहट को व्यक्त करता है जो ज्ञान और जीवन, बुद्धिमता और नैतिकता, विश्वास और तर्क, शैक्षणिक श्रेष्ठता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने की चाह है।
वहीं संत पापा लियो ने तुरिन में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हेतु अपना संदेश प्रेषित करते हुए साहित्य मानव सम्मान शांति और भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हुए युद्ध और उदासीनता की परिस्थिति में बच्चों के लिए दुनिया में आशा उत्पन्न करे कहा। हमें साहित्य की जरूरत है जो हर मानवीय सम्मान को विशेष रूप से अति संवेदनशीलों को पहचान प्रदान करते हुए भ्रातृत्व और शांति का एक विद्यालय बनता हो। इस मौके पर संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि पढ़ने से दिमाग पोषित होता है, इसके द्वारा चेतना और अच्छी आलोचनात्मक समझ विकसित करने में मदद मिलती है। उन्होंने किताबें पढ़ने का आग्रह किया और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे कि मृत्यु एक सच है, वह जीवन की वास्तविकता है और उससे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। श्रोताओं, अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी एक हद होती है। अत्याचार सहते सहते व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। इसीलिए उपदेशक कहता है कि किसी भी मामले में केवल शुरुआत पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उसके अंत तक धैर्य रखा जाए, क्योंकि धैर्य अहंकार से अच्छा है। वह सब्र और सहन शक्ति की तारीफ करता है और क्रोध न करने का हमें परामर्श देता है, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। तदुपरांत 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में उपदेशक अतीत पर विचार और विलाप करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। कहता है, यह मत कहो कि पहले के दिन अच्छे थे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि हम केवल अतीत के बारे में रोते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह अपने भविष्य को नष्ट कर डालेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम अपने वर्तमान की परवाह करें ताकि भविष्य सुरक्षित रह पाए। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक धन के सदुपयोग का भी अनुरोध करता है। धन जीने के लिए आवश्यक है, किंतु धन के गुलाम न बना जाए। प्रज्ञा, विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिए तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान किया करें।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। यहां उपदेशक के दृष्टिकोण से इस पद में भाग्य या नियति की भावना छिपी हुई है। मनुष्य भाग्याधीन है और जो कुछ होना है उसकी अनिवार्यता सुनिश्चित है। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप कहते हैं, शेर के सामने खड़े होना बुद्धिमानी नहीं है और न ही तूफान में पाल उठाने की सोचना। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णयों के आगे झुकना ही हितकर है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। फिर कहता है, सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। यहां उपदेशक सुलेमान का परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए इसी पर विचार करता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओ, सुख के दिन हम सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु हम जानते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते। कभी सुख तो कभी दुख, और दोनों में संतुलन बनाए रखकर जीना ही जीना है। जब जब सुख मिले, जब जब आनंद के पल आए, तो आप उसे अच्छी तरह जिएं, भले कर्म करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि कब बुरे दिन आ जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, मैंने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, क्यों हानि करना चाहते हो। न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो। अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से न जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। उपदेशक कहता है कि उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ को देखा। जब कथित अच्छे दिन थे उसने संसार की हर खुशी में खुशी मनाई। उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा और आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। उपदेशक मन ही मन यह दलील करता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। धर्मी और धर्म परायण व्यक्ति अपनी नेकी में ही मर जाए, यह कहां का न्याय है। अस्तु कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। कहता है, जीवन में संतुलन बनाए रखना बुद्धिमानी है। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान ने अपने पुत्रों से यह कहना चाहा कि वे जिंदगी की बेकार बातों को दृष्टिगत रखते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखें। नेक बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं, समझदार बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चालाक बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेवकूफ बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं। श्रोताओ, यह सोच लेना कि सब कुछ सही मात्रा में होना अच्छा है संभवतः ठीक नहीं है, यह समझदारी नहीं है। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को, संत पॉल को और बहुत से अधिक संतों को उनके युग में संतुलित इंसान नहीं समझा जाता था। लोगों के प्रति
उनकी जिम्मेदारी की उनकी समझ ने उन्हें कई लोगों की नजर में असंतुलित बना दिया था। अस्तु, दुख और सुख, धर्म और संसार, नैतिकता और भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदवे ने गुरुवार 14 मई को रोम के सपियेंसा यूनिवर्सिटी की भेंट की। यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित करने के पूर्व संत पापा लियो ने यूनिवर्सिटी गिरजाघर की भेंट की और महाविद्यालय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। अपने संदेश में संत पापा लियो ने विद्यार्थियों को सच्ची शांति के शिल्पकार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब सत्य की चाहत एक खोज बन जाती है तो पढ़ाई में हमारी हिम्मत एक नई दुनिया की आशा की गवाही देती है। उन्होंने संत अगुस्टिन को एक बेचैन नौजवान के रूप में याद दिलाया जिन्होंने गंभीर गलतियां की लेकिन सुंदरता और ज्ञान के लिए अपना जुनून कभी नहीं खोया। युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि आज की बेचैनी यह सवाल पूछती है, आप कौन हैं? यह सवाल हम चुपचाप ईश्वर से पूछते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हम खुद दे सकते हैं, फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी अकेले नहीं दे सकते। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के प्राध्यापकों से कहा, अपने विद्यार्थियों पर विश्वास करना सबसे जरूरी है, इसलिए आप स्वयं से पूछें, क्या मैं उन पर विश्वास या भरोसा करता हूँ। शिक्षा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह युवाओं के दिलों से बातें करना है और सिर्फ दिमागी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। संत पापलियो ने दाई किंडम कम अंतरधार्मिक वार्ता प्रार्थना कार्यक्रम को अपना वीडियो संदेश प्रेषित करते हुए अपनी आध्यात्मिक निकटता का सामीप्य प्रदान किया। अपने संदेश में संत पापा ने कहा, ख्रिस्त हमारे लिए सब कुछ है, उनमें हम जीवन की पूर्णता और उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। हम इस अनुभूति के बारे में चुपचाप नहीं रह सकते हैं, हमें इसे साहस में घोषित करने की जरूरत है क्योंकि यह सचमुच में सुसमाचार है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे संग है और हमारी मुलाकात उनसे हुई है और हम उसे दूसरों को बतलाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापा लियो ने संत पावलो बोलेवियन ख्रिस्तीय महाविद्यालय की 60वीं साल गिरह पर उन्हें अपना संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने अपने संदेश में कहा कि महाविद्यालय का अस्तित्व संपूर्ण मानवीय विकास को बढ़ावा देना है क्योंकि सच्चे शिक्षण का उद्देश्य मानव के अंतिम लक्ष्य और उसके अलग अलग दलों की भलाई को प्रोत्साहित करना है जिसका वह सदस्य है। इस संरचना के अंतर्गत मानसिक और नैतिक योग्यता, जिम्मेदारी पूर्ण स्वतंत्रता और जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देना है जिससे व्यक्ति में सोचने विचारने की योग्यता, खुली वार्ता के भाव और सही रूप में कार्य करने की योग्यता विकसित की जा सके। संस्थान के आदर्श वाक्य वेरितास इन कारिताते प्रेम में निष्ठा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति महाविद्यालय के प्रेरित कार्यों को संक्षेपित करती है जो विश्वास की आधारशिला में निहित है। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार सच्चाई अपने में सिर्फ एक बौद्धिक या अमूर्त विचार नहीं है बल्कि यह अपने को यीशु ख्रिस्त के संग स्थापित करना है जो अपने को विशेष रूप से सत्य स्वरूप प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण रूप में अपने को मानव के लिए व्यक्त करते और अपनी बुलाहट के बारे में स्पष्ट करते हैं। संत पापा ने कहा, सत्य की पहचान करना एक ऐसे व्यक्तिगत चेहरे और एक संबंध स्थापित करने वाला पहलू को व्यक्त करता है जो ज्ञान को हावी होने, अलगाव या सिर्फ उपयोग किए जाने से बचाता है। इसके बदले यह हमें न्याय और हर मानव खासकर सबसे कमजोर लोगों की सम्मानजनक सेवा हेतु अग्रसर करता है। वेरितास इन कारिताते एक शिक्षण संस्थान के बुलाहट को व्यक्त करता है जो ज्ञान और जीवन, बुद्धिमता और नैतिकता, विश्वास और तर्क, शैक्षणिक श्रेष्ठता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने की चाह है। वहीं संत पापा लियो ने तुरिन में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हेतु अपना संदेश प्रेषित करते हुए
साहित्य, मानव सम्मान, शांति और भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हुए युद्ध और उदासीनता की परिस्थिति में बच्चों के लिए दुनिया में आशा उत्पन्न करे कहा। हमें साहित्य की जरूरत है जो हर मानवीय सम्मान को, विशेष रूप से अति संवेदनशीलों को पहचान प्रदान करते हुए भ्रातृत्व और शांति का एक विद्यालय बनता हो। इस मौके पर संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि पढ़ने से दिमाग पोषित होता है, इसके द्वारा चेतना और अच्छी आलोचनात्मक समझ विकसित करने में मदद मिलती है। उन्होंने किताबें पढ़ने का आग्रह किया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।